0: इन्वॉल्व भी करे तो
1: स्पीक करे को प्रतिया
0: la modifico de la 4 a la 30.
1: ¿A la 30 me dijo?
0: Correcto, a la 30.
1: Ah, 31.